स्वर बल बहादुर वाइबा, प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।